twice and three times say, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. I have got all my problems solved by these three words. Three times, Ya Zainab. Sheikh Faizul Islam says, I decided, I went to my Musafir Khana and I did the same thing. I raised my hand. This is in Karbala. He has been to the haram of Hazrat Abbas. He has been into the haram of Imam Hussein. Now he says in the Musafir Khana, I raised my hands and I said three times, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. He says within a short time, within a few days, all the pain went away. This is the rank of the fard of the personality of Zainab Kubra. Ye masala. Ab kin kin ke baare mein baat kariyega. Ab kin kin ki fazilaton ko bayan kariyega. Aur kitni fazilaton ko aap bayan kariyega, mujhe bataiye. Aur ye jo hai na ek khandan, ye jaza dene ke liye. Bas ek chota si vaakya sun lijiye aur masaib tamam. Iran mein jo hai, takriban 150 saal pehle, 1830s, 40s and 50s, woh Qajari jo hai, Nasiruddin Shah Qajar ki hukumat thi. Nasiruddin Shah us zamane ka shah tha, Shah of Persia kaha jata tha usse, Qajari dynasty ka. Uska jo ek prime minister tha jiska naam tha Mirza Taqi Khan, jisko jo hai wo maroofan jo hai wo mashhoor, uska naam tha Amir Kabir. Shia tha, mutadayyin tha, deendar tha. Usse kaha jata tha the first reformer of Iran. Usne bahut sari tabdiliyan ki Iran ke, a great reformer. Reformed the economics, reformed politics, reformed education. Bahut maroof shakhsiyat, bahut mutadayyin shakhsiyat. Aur uska ek karnama ye tha ki jo bahai ka jo firqa hai na, uski mukhalifat bahut karta tha. Kehte zal hai, muzil hai, gumrah karne wala hai, gumrah firqa hai aur nabood kiya jaye to wo firqe ko jo hai wo uske sargaran jo uske jo sardar the sabhi ko jo hai wo pakad pakad ke jail mein. Ek martaba aise hua ki jo hai wo hammam mein naa raha tha ki dushman aaye aur usko uski haath ki jo hai wo rakh ko kaat di, and he bled to death, shaheed. Ab ye jo waqia jo hai na, wo Ayatullah Araki naqal karte hain. Dekhiye, main aapko reference sab deta hu, aap jo hai wo kisi iskal nahi kar sakte mujh par. Ayatullah Araki jo hai naqal karte hain ki maine jo hai kuch arse ke baad Amir Kabir ko apne khwab mein dekha. Ab ye ek marje taqreed bayan karte hain. Maine Amir Kabir ko apne khwab mein dekha aur ajeeb halat mein dekha. Chehra noorani, libas fakhir, ajeeb kaifiyat, ali shan. Kehta Amir Kabir, itni mashallah khuda ne itni nemat, itna nawaza hai tumhe, kis baat ke liye nawaza hai? Is baat ke liye ki tum shaheed ho gaye? Kehte nahi, isliye nahi. Ya is baat ke liye ki tumne jo hai wo millat ki aur qaum ki bahut khidmat ki? Bolte nahi, isliye nahi. Bolte phir yaqinan isliye hoga kyunki tumne wo firqa zalla jo gumrah firqa tha usko jo uska khatma kiya, shayad uske liye khuda ne tumhe jo hai ajr diya? Kehte nahi. To phir ye maqam kaise mila? Ye ek marja taqleed poochte khwab mein. Kehte ye maqam mujhe Husain ibn Ali ne diya. ये मकाम मुझे हुसैन इब्न अली ने दिया. पता है हुसैन इब्न अली कहां से आए? बात कैसे? कहते बात इस तरह हुई कि जब मेरी रग काटी गई ना, और मैं जो हम्माम में मेरा खून जारी था, जब खून निकलता तो एक मर्तबा शिद्दत की प्यास होती है, शिद्दत की जो है वो तिश्नगी होती है. अब मैं था हम्माम में, जब मेरा खून निकल जारी हो रहा था और मेरी रूह जो है वो निकलने वाली थी, इतनी शदीद प्यास लगी मुझे कि एक मर्तबा मैंने अपने चुल्लू में जो है वो हमाम का पानी लिया ताकि जो है दो घूंट पी लूं ताकि मुझे तिश्नगी से थोड़ी राहत मिल जाए. बस हाथ में चुल्लू में पानी लिया कि एक मर्तबा मेरे जहन में बात आई, ए अमीर कबीर, अरे पिसर जहरा को तो सोच तू, अरे करबला में किस तरह मजलूमाना शहीद किया गया, प्यासा जो है सर जबा किया गया. अरे हुसैन की प्यास को याद कर, तेरे जो है अब थोड़ा एक रग कटी है और तुझे इतना प्यास, इतनी प्यास लगी है. बस इमाम हुसैन की प्यास को मैं सोचते हुए कि मौला आपकी प्यास को याद करते हुए मैं अपनी प्यास को ना बुझाऊंगा, एक मर्तबा पानी मैंने जो है पटक दिया. बस जैसे ही मेरी रूह निकली, एक मर्तबा मैंने देखा आका हुसैन मेरे सामने है. अरे आप लोगों ने जब मुझे जो है वो दफन किया, जैसे ही मेरे रुखसार जो है मेरे कब्र में थे, मैंने देखा आका हुसैन मेरे पास है, मुझसे कहा, एक इशारा किया, ये जो कब्र जो है वसी हो गई, जन्नत के बागों में से एक बाग हो गई, नेमत जन्नतों की मुझे अता की गई. और एक मर्तबा हुसैन मुझसे कहते, अमीर कबीर, ये बस ये टेम्पररी जो है मेरे तरफ से तोहफा कबूल कर, जो आखिरत का तोहफा है, तेरा कर्जा है मुझ पर, वो आखिरत में मैं तुझे अदा करूंगा. हाथ जोड़कर कहूंगा, मौला अरे आपने एक शख्स जो प्यासा था

और प्यासा रहा आपकी मोहब्बत में, इतना जो है जजा इतनी जजा दी। लेकिन मौला कोई आपकी प्यास को देखे, आप सुनिएगा, जब मौला दुनिया से जा रहे थे इतनी शदीद प्यास थी, बार बार पुकारते थे हाय कोई दो घूंट पानी दे दे, जिगर फट रहा है मेरा, कोई पानी ना दिया। उस वक्त मौला आपको और मुझे याद किया, ए शियती महमा शरीफ तुम्मा अजबिन फज करोनी, ए मेरे शिया, जब ठंडा पानी पीना, हुसैन की ये प्यास को याद करना, और किसी गरीब और मजलूम को देखना, हुसैन की मजलूमियत करबला में याद करना, अरे वारिस कायनात एक जानवरों की तरह जबा किया जा रहा, वाह हुसैना वाह मजलूम। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسين.

0: मैंने अभी 5 मजलिसें पढ़ी हैं इरफान अमली के उनवान से, बैंकॉक में ऑनलाइन शायद मौजूद है, तो उसको ज़रूर देखिए। यानी हमारे उरफा का पहला मरहला यह है कि यकदा, यकदा के माने अवेकनिंग, उठ जाना है। एक सोए हुए इंसान से कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि वो उठेगा नहीं, जब तक वो बेदार नहीं होगा उस वक्त तक कोई काम बनने वाला नहीं। मैं बस में चढ़ रहा था, मेरा बटवा उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? गफलत में उड़ गया। मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरा फ़ोन छीन लिया, मैं गफलत में था मेरा। तो इंसान छिन जाता है गफलत में, है मेरे साथ? इंसान लुटता है गफलत में, होशियार कभी लुटता नहीं। तो 56 कंट्रीज गफलत में लुट रहे हैं। एक है जो सलवार पढ़िए मोहम्मद, कंट्रीज हैं उनको लूट रहे हैं, ले रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि हम लूटने आए हैं और लूट रहे हैं। इसीलिए सरकार ने फरमाया जो 10 आयतें पढ़ेगा रोजाना, लम यक्तुब मिनल गाफिलीन, उस पर जो है ये छाप लगेगी नहीं कि वो गाफिल है, हीडलेसनेस उसके पास मौजूद है। 10 आयतें रोजाना पढ़ने वाले के लिए बेदारी है। मौला का ये कौल हमेशा से आप सुनते रहते हैं, अन्नासु नियामुन इदा मातुन तबहु, लोग सो रहे हैं जब मरेंगे तो उठेंगे। कब्र में मनोमट्ठी के बाद उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आयत है सूरह मोमिनून की 30वां सूरह 199 बहुत ही खूबसूरत आयत है। कब्र में जाने के बाद फरिश्तों से बोलेगा इंसान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अर्जिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन, मुझे पलटा दो, मैं नेक अमल करके फिर वापस आऊँगा, लेट मी गो बैक टू दिस वर्ल्ड। कहेगा ये सब अल्लाह कहेगा झूठा है, इस ज़िंदगी में मैंने कई मोहलतें दी हैं, हर मोहलत के बाद यही कहता रहा कि मैं इस मरतबा नहीं करूँगा। जैसे ही उसको आसानी मिली, इदा हूँ युशरिक, वो शिर्क करता है, भूल जाता है। तो ये गफलत जो हमारी है उससे बेदार करने वाले का नाम है नबी या इमाम या रसूल या मौलवी। सलावात पढ़ी
1: होंगे।
0: अगर हकीकत में वो मेंबर पे बैठा हुआ है, मैंने हर जगह ये कहा है, ये मेंबर क्या है भाई? मेंबर है, बोले जोर से, मेंबर है, मेंबर है, मेंबर है, ये मेंबर है रसूल है, मेंबर है खिताबत नहीं, ऑरेटरी की जगह नहीं है, रिसालत की जगह है, या मैसेज जाना है। ऑरेटरी हो भी तो वो भी, खिताबत भी हो तो भी रिसालत के लिए। अगर वो ऑरेटरी यूज़ भी कर रहा है, काहे के लिए होना चाहिए? मैसेज ऑफ द प्रॉफिट, कुरान के मैसेज को पहुंचाने के लिए। ये मेरी जिम्मेदारी गर्दन पर है, मेरे रोज़े क़यामत पूछा जाएगा, अगर 500 का मजमा है, 500 के मजमाने के माने 3 घंटे आने जाने और मजलिस के, 3 घंटे के माने हो गए 1500 घंटों का तूने अपने गर्दन पे जिम्मेदारी ली है। रोज़े क़यामत पूछा जाएगा तुमने क्या किया, हाँ? सबका कबूतर बिगाड़ करके अपना उल्लू ठीक करके चला गया, ये तेरा काम था ना? तेरा ये काम था कि तुम बेदार करते सोए हुए इंसान को। बेदार वही कर सकता है जो खुद बेदार हो। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले, अब ये बताइए कि कुरान पूरा सही है नहीं है, अल्लाह का कलाम है या नहीं है? स्पेशल अल्लाह का। तो एक आयत अगर सच्ची है तो दूसरी आयत भी सच्ची है। एक आयत पर अमल हो रहा है, दूसरे पर अमल नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ। तो जिस तरह से अकीमुस सलात पर अगर हम काम कर रहे हैं तो एदलू पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अकीमों के माने एस्टैब्लिश प्रेयर, एदलू के माने डू जस्टिस। जब नमाज के कायम करने के लिए इतनी ताकीद हो रही है तो जस्टिस के लिए क्यों ताकीद नहीं हो रही है? अंबिया के मिशंस को कुरान ने बयान किया है आयतों के जरिए से। जो बहुत मशहूर आयत है सूरह जुमा की, वल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम।

पहला मकसद है रिजोर्सेस को हड़प करें, रास्तों को बंद करें, और जितने वो रास्ते हैं जहां से गुजरती हैं तमाम चीजें, उन रास्तों पर अपनी हुकूमत चलाएं। अब आपको मैं सवाल करता हूं, टैरिफ लगाने का हक अमेरिका को कहां मिला? जी, ईरान से निकलने वाले या आपके मिडल ईस्ट से निकलने वाले तेल पर आप कौन हाकिम बने हुए हैं कि यहां पर टैरिफ लगाऊंगा? तो इससे पता चल रहा है कि मसला कोई और नहीं है, मसला है पैसे का। तो क्या कैसा जीतना चाहिए? पहले लोगों को सुला देना चाहिए ताकि जीत सकें। तो सुलाने के लिए क्या आया? सुलाने के लिए टीवी आया, ये डांस आया, ये कैबरेस आया, ये आए ताकि लोग शराब औरत में घूम रहे और ये जो अपना उल्लू ठीक करें। इस्लाम ने कहा जिस चीज को सुला रही है जो चीज उसको हटाया जाए ताकि इंसान बेदार हो। सलवार पढ़िए मोहम्मद। अल्लाह ताला सलामत रखे। दरअसल 10th है, इज नॉट ईजी, तो बहुत ही मुश्किल मरहला है, लेकिन आप लोग इस पर होमवर्क करें, काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस पर नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आपको एक आयत देने जा रहा हूँ, सूरह हश्र की आयत का एक हिस्सा है। सूरह हश्र 59 चैप्टर है, आया नंबर 7। तस्करा है इस सूरे में, इस आयत में, इन रिगार्ड्स टू द वार बाउटीज, फाई कहते हैं उसको अरबी में। ये वार बाउटीज को किस तरह से तकसीम करना चाहिए बहस है, मिस्कीन के लिए, यतीम के लिए, और जो जरूरतमंद है उसके लिए, आमलीन के लिए वगैरह। उसके बाद कुरान ही कहता है कैला दूलतन बैनल अग्निया, कहीं ऐसा ना हो कि वेल्थी पीपल के अंदर ही दौलत बट रही है। तो अब आइए, आज की दुनिया में वेल्थ किसके हाथ में है? सिर्फ 10% पॉपुलेशन के हाथ में है। खुद हिंदुस्तान में कितनी फैमिली के हाथ में है? 45 या 50 फैमिलीज के हाथ में वेल्थ है पूरे हिंदुस्तान की। कितना परसेंटेज है? मिन्यूट परसेंटेज। ये 45-50 फैमिलीज आपको बेवकूफ बनाती हैं ताकि वेल्थ उनके पास डिवोर हो जाए, उनके पास तकसीम का तसव्वुर ही नहीं है। ये तकसीम कैसे करें? इस्लाम ये कहता तलवार से नहीं, इंसान को इतना बेदार कर दो कि वो लूटे नहीं। बहुत ही अहम बात है, यानी ये नहीं कह रहा कि इस्लाम जाके जंग करो ना, इस्लाम को इंसान को इतना तुम बेदार कर दो, युफून बिन नजर व यखाफून यौमन काना शर्रहु मुस्ततीरा व युतअमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतअमुकुम लिवजहिल्ला ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन। आइडियल, ये देखो, ये आइडियल फैमिली है, 3 दिन भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, खानदान भूखा है, लेकिन एक भूखे को खाना खिलाना वो फरीजा समझते हैं। तुम भी इनसे सीखो, लूटना कमाल नहीं है, लुटा देना। सलावत पढ़िए मोहम्मद। और एक बात जो बहुत अहम है इसी ब्रॉकेट में जरा सा बयान कर दूंगा, ये हदीस को हर आलिम जुम्मे के खुतबे में बयान करता है, रिपीट करता है। इमाम ज़माना जब तशरीफ लाएंगे अज़ल्लाहु ताला यमलौ अल-अर्ध क़िस्तन व अदला बादमा मुलियत ज़ुल्मन व जौर, He shall fill the world with justice and equity while it would have been filled with injustice and iniquity. यानी वो इमाम जब तशरीफ लाएंगे क्या करेंगे? दुनिया को अदालत से भर देंगे जबकि दुनिया जुल्म से भरी होगी। सवाल, इमाम आएंगे तो इमाम इस्लाम लाएंगे? नहीं, इस्लाम लाएंगे। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि यमलुल अर्द इस्लाम व ईमाना बादमा मुलियत कुफ्रम व शिरका, जब इमाम आएंगे तो इस्लाम फैलाएंगे, ईमान फैलाएंगे जबकि दुनिया शिर्क से भरी होगी? ना, अदालत फैलाएंगे। तो पलाम व अदालत न्यूक्लियस है नमाजों का, रोजे का, दीन का। अगर अदालत जिस सोसाइटी में नहीं है वह नमाजें होते हुए भी बेकार। सलावत पढ़िए मोहम्मद। Yeah.

अगर जस्टिस नहीं है, जस्टिस नहीं है। और एक मैं नौजवान बच्चों को हमारे आपस में समझने के लिए, रिलीजन इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, मैं भी मौलवी हूं बता रहा हूं, जैसे ही मजहब की बात छेड़ते हैं तो लोग कहते हैं इट्स ए बोरिंग सब्जेक्ट, टॉक समथिंग एल्स मैन, क्या है। और इसीलिए हम बचपने में, हम जब होटलों में जाते थे चाय पीने वगैरह के लिए, वहां पे लिखा होता था यहाँ सियासी मजहबी बात करना मना है जी, क्यों, या पॉलिटिकल और रिलीजन, पॉलिटिकल रिलीजन बात करते हुए घंटों बैठ जाते, चाय चाराने की चाय पिएगा घंटा छोड़ेगा नहीं सीट को, इसीलिए लिखा जाता था कि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल और रिलीजन की गुफ्तगु नहीं होना चाहिए, रिलीजन इज ए बोरिंग सब्जेक्ट। हम लोग जो आते हैं मजलिस में टू एंटरटेन आवर सेल्फ, सॉरी टू से दैट, ये बहुत मजा आ गया, सुना हो गया, बहुत ही अच्छा आ गया, ये मौलवी बहुत अच्छा आता है, वो जन्नत दे देता है बगैर काम किए, इससे अच्छा क्या मौलवी है भाई, बगैर कुछ काम किए भाई माशाल्लाह तुम जन्नत जाओगे, खुश हो गए नारे हैदरी जी, जन्नत भेज रहे हैं बगैर काम किए हुए, इससे अच्छा कौन मौलवी हो सकता है। अगर ये मौलवी जन्नत नहीं पहुंचाएगा, इस मौलवी को हम जहन्नम में डाल देंगे। ये ट्रेजेडी है। कोई नबी एक दिन पहले नोट्स नहीं लिखता था कि टुमारो मैं ऐसी स्पीच करूंगा कि पूरा मजमा फड़क जाएगा, बल्कि हर नबी ये नोट लिखता था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसका सलूशन क्या है, प्रॉब्लम्स को बता करके रुलाता था, उठो सोते क्यों। सलावत पढ़िए, कल मैंने बताया था उसी ईरान में, जिस ईरान में मैं रहा हूँ 79 के से पहले, शाह ईरान लानतुल्लाह अलैह के दौर में, शराब कबाब सुअर का गोश्त आम था, खुला आम था, मस्जिद मुकद्दस हर बुराई मस्जिद मुकद्दस, किसी जायज ज्यारत करने वाला आता उसको पता भी नहीं चलता था, हर चीज़ वहाँ थी मौजूद थी। और मौलवी हजरात कितने, हर मौलवी कह रहा था नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, शराब से दूर रहो, सारे मौलवी हजरात उस जमाने में 50,000 जितने भी थे मौलवी हजरात रमजान में मुहर्रम में मजाली पढ़ते थे कि बुराइयों से दूर रहो, मगर बुराई खत्म नहीं हुई। तो मालूम हुआ बुराई बयान से खत्म नहीं होती, बुराई हुकूमतों के बदलने से खत्म होती है। इमाम खुमैनी ने इसीलिए विलायत फकीह का मौजू छेड़ा, जब तक कि हम इस विलायत को नहीं लेंगे दीन इस्लाम को हम चला ही नहीं। सलावत पढ़िए, ये जो खुतबा मैं पढ़ रहा हूँ आजकल तकरीबन जब से जंग शुरू हुई, मैं वरना में आप लोग नोट करते हैं नहीं मालूम, हर मजलिस में नया खुतबा पढ़ता था, मगर जब से मैं ये चल रहा है यही खुतबा पढ़ रहा हूँ। ये खुतबा कहाँ से है, दुआए इफ्तिताह रमजान में इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला दुआओं का एक टुकड़ा है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया टुकड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यरफ़ुल मुस्तदअफीन व यदअुल मुस्तकबिरीन। मेरे मौज़ू का बिल्कुल बेहतरीन है, आज बैठे हुए दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगारा तू कौन है, तू कौन है, तू वो है जो अमन देता है, जो सिक्योरिटी देता है फ्राइटन वन को, जो लोग डरे हुए हैं उनको सुकून देता है। अजीब गरीब है, ये जो रिपोर्टर्स वगैरह जो वेस्टर्न कंट्री के जब जाते हैं गज़ा में, घर टूटा हुआ है जी, कुछ भी नहीं है, मगर ये लोग वेलकम करते हैं, उसी टूटे हुए घर में चाय पिलाते हैं और ऐसी पसीराई करते हैं, ऐसा उनका ख्याल करते हैं कि वो परेशान हो जाता है, इनके चेहरों में ना परेशानी है ना कुछ है, सब कुछ लूटने के बाद ये इत्मीनान कहाँ का है। मौला फरमा रहे हैं अल्लाह की ज़ात वो है जो घबराए हुए लोगों को अमन दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन। और आइए दूसरा जुमला, कुरानी आयत व युनज्जिस सालिहीन। नौजवानों खुश नई नस्ल और छोटे बच्चे तमाम समझ लो, रहबर ने भी कहा था तुम लोग बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ोगे,

الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. What is the survival game of the world? किस तरह से बचेंगे दुनिया में? कैसे बचेंगे दुनिया में? Become big, you will survive. ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यही है कि तुम बिग हो जाओ, डिवोर करो लोगों की दौलत को, बहुत ज्यादा खबी हो जाओ. उस जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती चली जाती है, फिर वो वेल बन जाती है और जिसके सामने कोई मछली जाने को तैयार नहीं होती. तुम डिवोर करते जाओ, मजे करते जाओ, तुम बड़े कवि हो जाओगे. कुरान ने कहता है ना ना, ये सिस्टम नहीं है. हमारा सिस्टम है, हम सालेहीन को हाथ में देंगे हुकूमतों. वयुनजी सूरह कहां से भाई? सूरह अंबिया कुरान का 21वां सूरह है, 105वीं आयत. लकद एक सलवार पढ़े मान लो, लकद कतबना फिज ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, वी हैव ऑर्डाइन इट, लिख दिया है हमने. लिख दिया के माने नो वन कैन एरेस. अब यहां पर दो चीजें याद रख लीजिए. कुरान में दो तख्तियों की बात किया है, दो टैबलेट्स की बात किया है, दो स्लेट्स की बात किया है. नंबर वन, एक स्लेट यह है कि जिस पर कोई जो लिखा हुआ मिटा नहीं सकता. एक टैबलेट वो है जिस पर लिखा जो गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता. मगर एक टैबलेट वो है, यमहुल्लाह मा यशा व युसबित व इंदहु ज़ाते परवरदिगार का, तो जिसको चाहता खुदा मिटा देता है, जिसको चाहता खुदा नहीं मिटाता. जिस तरह से हमारे बचपने में पेंसिल के लिए मिटाने के लिए रबर अलग अलग था, लेकर के रबर से साफ करते थे, उसको एरेसर कहते हैं. आजकल की दुनिया में पेंसिल के ऊपर ही लगा हुआ रबर है, फौरन ही गलती हुई मिटा दिया. अल्लाह कह रहा ऐसे भी गुनाह हैं जिसको हम मिटा देंगे, लेकिन बाज ऐसे हम मिटाने वाले नहीं है. जो नहीं मिटने वाला है उसको कहते हैं लौहे महफूज. लौहे महफूज में जो लिख दिया गया है वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो होने वाला है. अल्लाह ने ये लिख दिया है, लकद कतबना फिज ज़बूर मिन बादि ज़िर ذِكْرْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِ الصَّالِحِينَ. ہم نے یہ لکھ دیا ہے, this world shall inherit by the pious. یہ پوری دنیا کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ غنڈوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گی, پاکیزہ لوگ. سلوات پڑھی محمد والا. یونیک ہے قرآن, قرآن مزیدار ہے. لطف لیجئے قرآن کو, سمجھئے, پڑھئے. कुरान ये कह रहा है कि दिस इज गोइंग टू हैपन. तुम कितनी कोशिश करो मगर ये मैं करने वाला हूं, तो यह और बात है कि कोई चुन लिया गया है इस काम के लिए. क्या कहने उस जात के जिसको अल्लाह ने चुना है कि तू मेरा ये काम कर, और उसी का नाम है वली फकीर. सलावत पढ़िए मोहम्मद अल्लाह. गैबत इमाम में आया हम बैठे रहे इमाम को. मैंने कहा एक सवाल यही था कि जब 13 साल दरस खारिज दिया नजफ अशरफ में, हम लोग बैठे, लोग हमारा माल ले जाएं, हमारे घर में लूट ले, हमारे औरतों पे हमला करें, हम कुछ ना करें, कि ये दीन सिखाता है ना? दीन ने सिखाया है एटलीस्ट डिफेंस. कम अज़ कम मेरे घर में बैठा हुआ हूँ, कोई घर पर हमला करता है, मैं डिफेंस करूँ या नहीं करूँ? इसके मौलवी से पूछो मैं ना, ये नेचुरल बिहेवियर है. मेरे घर में मैं बैठा हुआ हूँ, हमला हो रहा है, जैसे ही हमला हुआ आई हैव नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंस माई सेल्फ. मैं अपने आप को दिफा करूँ, ये मेरी हकीकत है, इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता. इसीलिए इस्लाम में पहले जंग, इसीलिए सरकार जब भेजते थे कि तुम पहला हमला मत करो, जब हमला हो तो जवाब. करबला में भी मौला ने कहा कि ना अब्बास, तुम हमला नहीं कर सकते जब तक. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले. वाजिल फरजहुम, रगों में वो लहू बाकी नहीं है. इकबाल, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है. नमाज वो, रोजा वो, कुर्बानी वो, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है. कितने मिलियन हज में गए भाई? 3 मिलियन, 2.5 मिलियन हज में गए.
क्या करके आ गए, तवाफ करके आ गए।

0: लिख के रख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको क्लिप बनाइए। हर मर्जा वली है फकीह है, आयतुल्ला सिस्तानी भी वली फकीह हैं, रहबर उम्मत भी वली फकर। फर्क क्या है? आयतुल्ला सिस्तानी ये कहते हैं मुझे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके माने के पार्शल विलायत का इकरार कर रहे हैं, टोटल विलायत नहीं। ये विलायत फकीह कहती ना, तुम्हारी परेशानी का भी हल मेरे हाथ में है, जो कुरान ने दिया मेरी फरीजा है, इसका नाम है टोटल विलायत। जिसके हाथ में है वो वली तलवार पड़ी। इसमें सिर्फ टू रेस्क्यू अवर सेल्फ, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाने के लिए कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं। हजरत मूसा कहा गया, मूसा से क्या कहा कौमे मूसा ने, इधाबा अंत व रब्बो का फ़कातिला, आप जाइए आपका परवरदिगार जाए, फिर आप जंग कीजिए किसे, फिरौन से। पहला सवाल, अंबिया का काम तस्बीह करने का, इबादतों का काम है, ये कह रहे हैं फिरौन के सामने जाओ। अच्छा, कुरान में सबसे ज्यादा जो बार बार जिक्र है किसका है? मूसा फिरौन, मूसा फिरौन, मूसा फिरौन। क्यों इतनी बार कह रहा है खुदा? इंसानों बेदार हो जाओ, हर जमाने में फिरौन है, हर जमाने में मूसा। उस मूसा की तलाश करो जो फिरौन से जंग करने वाला है, उस असा की तलाश करो जो फिरौन से जंग करेगा। हर कुरान की हर आयत 136 टाइम्स हजरत मूसा का नाम है, मूसा मूसा। फिरौन का नाम 75 टाइम्स है कुरान में। वन कुरान कौन सी किताब है? हुदल्लिन नास, इंसानों की हिदायत। हिदायत कर रही इंसानों को, सिर्फ शियों का नहीं, मुसलमानों का नहीं। दुनिया वालों उठो, बेदार हो जाओ, फिरौन की तलाश करो जो तुम्हारी दौलत को लूट रहा है, और उस मूसा की तलाश करो जो इस फिरौन से लड़ रहा है। लकुल फिरौन मूसा है, कि हर फिरौन के लिए मूसा। आज के फिरौन के लिए मूसा कौन है?
1: हम बेरो किसके,
2: रहबर के।
1: हम नौकर किसके,
2: रहबर के।
1: माँ बाप फिदा है,
2: रहबर के।
1: सब कुछ फिदा है,
2: रहबर के।
1: जो खून रगों में बहता है
2: वो रहबर, रहबर
0: कहता है।
1: रहबर के फरमान पर
2: जान भी कुर्बान है,
1: सैयद के ऐलान पर
2: जान भी कुर्बान है।
1: लब्बैक या खामेनाई,
2: लब्बैक या खामेनाई।
0: ये वालेहाना मोहब्बत जो है लविंगली, यानी विदाउट एनी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हिंदू भी मोहब्बत कर रहा है, अफ्रीकन भी, ईस्टर्न भी, वेस्टर्न भी। सबसे ज्यादा मकबूल, चंद साल पहले ईरान वॉज मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बाकायदा प्रोपेगेट करके इस तरह बिठाया गया। आज मोस्ट बिलवड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये कैसे चेंज हो गया, सिस्टम कैसे चेंज होगा? इसलिए कि बहस जो है फितरी है, यानी नेचुरल बहस है, इंसान के इनेट रियलिटी की बहस है। जैसे इन्होंने सामने ला करके पेश किया, दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। आयत हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने और आपको एक जरा सा सबक भी देता हूँ। मौलाना ताबीज़ दीजिए। कह के रहे ताबीज़, बेटा सुन रहा नहीं, बेटा सुनता नहीं है। मौलाना ताबीज़ दीजिए, मेरा शौहर मेरा सुनता नहीं। शौहर कह रहा है मौलाना कोई ताबीज़ दीजिए, बीवी सुनती नहीं। बाप ये कह रहा है बेटा नहीं सुनता, बेटा कह रहा है बाप नहीं सुनता। सबको ताबीज़ चाहिए, मैं ताबीज़ दे रहा हूँ, और लिखी हुई ताबीज़ नहीं, नुस्खा दे रहा हूँ। मन खाफ अल्लाह अखाफ अल्लाह मिन्हु कुल्ला शय, जो अल्लाह से डरेगा उससे सब डरेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात सुने, तुम अल्लाह की बात सुनने लगो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात सुने। सलावत पढ़िए मोहम्मद पर। अल्लाह की बात मानिए, उसकी बात मानिए, यकीन कर लीजिए। ज़ालिकल किताब, मैंने कई मजालिस में सब जगह कह रहा हूँ, वी नीड ए माइग्रेशन। कैसे माइग्रेशन? AI, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक नौजवान बच्चा है मेरे पास, मौलाना वी डोंट नो यू, वी डोंट नीड यू। ओहो।

0: माशाल्लाह भाई इससे अच्छे क्या भाई, मौलवी की जरूरत नहीं, हालांकि मौलवी तलखीन पढ़ाए तक छोड़ता नहीं है मौलवी छोड़ता थोड़ी है, नहीं वी डोंट नीड यू। अच्छा क्यों यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आप मुझसे सवाल कीजिए मैं जवाब देता हूँ। नौजवान आजकल बात करते हैं बिल्कुल ब्लंट मौलवी साहब से, जी मैंने कहा मैंने एक हाइपोथेसिस एक सवाल किया तो फौरन आई आंसर, बेहतरीन आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। मैंने कहा इसी एआई से सवाल करो, कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, कैन आई ट्रस्ट इन यू जी, क्या मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ। पांच जवाब आए, टॉप जवाब ये था डोंट ट्रस्ट मी, इसलिए कि आई एम मेड आउट ऑफ यू, अगर तुम गलती कर सकते हो तो मैं भी गलत, तुम अगर गलती कर सकते हो तो मैं भी, डोंट ट्रस्ट ऑन एआई मैन। जब भी जवाब देखो तो फौरन टेस्ट करो कि एआई जो जवाब दे रहा है कुरान के करीब है, हदीस के करीब है ये या नहीं है, ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर एक किताब पे जरूर ट्रस्ट करो कि हिजरत करो एआई से टीआई की तरफ, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह,
1: कुरान वो किताब है जो दर्से इंकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर्से इंकलाब है।
0: अली की तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, उसके साथ वो है जुमला। चलो आप पढ़िए मोहम्मद
1: वाजिल
0: है, मेरे साथ रहिए, साथ रहिए कुरान की। कुरान साफ कहता है नुमीनो बेबादेन व नकफुरु बेबादेन, वी बिलीव इन समथिंग वी डिसबिलीव इन समथिंग। कुरान इस पूरा टोटल पैकेज है, कुरान इजाजत नहीं देता कि चंद आयतों पर अमल करो चंद आयतों पर अमल ना करो। टोटल पैकेज का नाम है हुकूमत इस्लामी। जब तक हुकूमत इस्लामी नहीं होगी, कल मैंने बताया था 48 बुक्स जो है सोते रहेंगे, कोई अमली मैदान में वो कम काम करने वाली नहीं है। अगर अमली मैदान में कोई काम करेंगी तो जब आप इस पूरे दीन को हुकूमत की शक्ल में बदलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह यकीन कर लीजिए कुरान का खुला हुआ वादा है वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, अल्लाह यकीनन उसकी मदद करता है जो अल्लाह के दीन की मदद करता है। इसमें यकीन कर लीजिए कि कोई खराबी होने वाली नहीं है, बहुत जल्द दीन इस्लाम, बल्कि ये इनकलाब एक बेहतरीन जमीना होगा इमाम जमाना की हुकूमत। सलावात पढ़िए इमाम जी। तो टुडेज गुफ्तगू हमारी कल से ये है कि लिविंग इन दी प्रेजेंट। मौलाना क्या कल का हम इंतजाम ना करें? आई एम नॉट सेइंग दैट। ये टॉपिक के माने ये हैं कि अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्लान भी तुमको प्रेजेंट में ही करना है। अगर आज प्लान नहीं करोगे कल तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। कुरान की आयत है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू स्ट्रगल। इंसान नहीं है जब तक के स्ट्रगल नहीं करेगा, अगर स्ट्रगल करेगा तो क्या होगा? इंसान होगा। वो सायहु सौफा युरा, जो स्ट्रगल किया है वो सामने नजर आएगा। अगर मेहनत किया है स्कूल में तो परसेंटेज से मालूम हो जाएगा कितना परसेंटेज है। नौजवान बच्चों को बताता हूँ, अब फ्यूचर में पासिंग मार्क्स भी नहीं चलता, 70% भी नहीं चलता, 90 अबव हो तो सर्वाइवल तुम्हारे हैं। गेट अप मैन, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। दुनिया के चैलेंज को समझो। अब एआई सेट कहाँ जा, कहाँ तक जाना है? टीआई तक। आज ईरान ने एक इंट्रोड्यूस किया बीआई, सब परेशान है, तुम अभी तक एआई में रहो, अब हम कहीं और पे चले गए। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस तक पहुंचा दिया, अहले बैत के दरवाजे पे चले जाओ, अहले बैत तुम्हें कहीं और पहुंचा देंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वी नीड लॉट ऑफ रिवाइव लॉट ऑफ वर्क्स, बहुत काम करना है, बहुत बेदार होना है, छोटी छोटी बातों में उलझिए नहीं। ये होता है अकायद के माने में, हम लोगों को इसमें डाल दिया गया उसमें डाल दिया गया, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इल्म हासिल कीजिए, किसी खतीब को भी कम मत समझिए, हर खतीब कुछ ना कुछ दे रहा है, जो अच्छा दे रहा ले लीजिए, जो नई बात में समझ में आ रही है उसको छोड़ दे, तो स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाएगा सोसाइटी का, इल्मी ट्रांजैक्शन, जहालत से इल्मी इल्म की तरफ।

की तरफ जाएंगे तो आपको मालूम हुआ है 79 से पहले ईरान में 37% लिटरेसी थी, आज 80+% लिटरेसी है। आपके मिसाइल्स को लड़कियां, नौजवान लड़कियां कंट्रोल कर रही हैं। मिसाइल्स को ईरान में नौजवान लड़कियां, मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक साहब ने कहा कि मौलाना आजकल हमारी औरतें भी कंट्रोल कर रही हैं, घरों को तकसीम करना है, किसी के घर को उड़ा देते, किसी कम नहीं, हमारी औरतें भी कुछ कम नहीं है। सब आप पढ़िए मोहम्मद, इल्म के किस मेयार पर ले गया। इसीलिए मैं बताता हूँ कि हकीकत में ये जो हदीस है अना मदीनतुल इल्म अलीउल बाबा, ये सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं है, प्रैक्टिकल में अगर अली वाले हैं तो बाप बनना ज़रूरी है, दरवाज़ा बनना ज़रूरी है। आज के तमाम जंग के जो एनालाइज की जा रही है जंग के मैदान में, यही है कि ईरान ने बम फेंका या ये कि मिसाइल फेंका, ये बहस नहीं हो रही है। प्रेसिशन प्रेसिशन प्रेसिशन प्रेसिशन, हर एक साइंसदान, हर एक अकलमंद यही गुफ्तगू कर रहा है, ये मिसाइल्स की तारीफ नहीं है। जहां मारना है वहीं मारना है, इसीलिए अली ने कहा था ना नुक्ता तो ताकत, तलवार पड़ी है मोहम्मद वाले राज्य। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे इंशाल्लाह। आइंदा गुफ्तगू हम कल से दूसरे मौजू पे जाएंगे, क्योंकि आजकल की ज़हना में उलझ रही थी बात कि जंगों का क्या नतीजा होगा। नतीजा होगा कामयाबी, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान का वायदा है, कुरान का वायदा सच्चा है, एंड रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ मुत्तकीन, इन द हैंड्स ऑफ सालिहीन, ये नतीजा होने वाला है। आज के मॉडर्न जमाने में इस दीनी हुकूमत ने साबित कर दिया, और किसी ने कहा है 56 बहनों में एक ही भाई निकला 56 बहनों में एक ही भाई निकला, वो भाई इतना कभी है, बहनों को साथ लेके जा रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद, आजिल फरज। आज पहली सफ़र हो गई है, कल मैंने बताया तो शबे पहली सफ़र, पहली सफ़र के माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करबला यकीनन मुसीबत की जगह है, लेकिन शाम वो है जिसको इमाम भुला नहीं सकता। मौला कहाँ तकलीफ हुई सबसे ज्यादा, हर्ट कहाँ, करबला कभी नाम नहीं लिया। अश्याम मेरी बहन तेरी चादर सलामत रहे, तेरी इफ्फत सलामत रहे, मेरी बेटियों, इन मसाइब पर वही रो सकता है जिसकी बहन बापरदा है। नफ्सियात के माहरीन को लीजिए, पूछिए द साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर कोई औरत एक कन्फाइन मुकाम पे पले, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में चारों तरफ हमेशा भाई प्रोटेक्ट करता रहे, पूरा खानदान उसका ख्याल करता रहे, अगर ऐसी औरत को बाजार में खड़ा कर दिया जाए कौन है जैनब, जैनब वहाँ के हसन हुसैन नाना की जियारत करना चाहती है, रात को मगरिब के बाद जाए और मस्जिद की कंदीलें बुझा दी जाए, दो भाई लेकर इतने महफूस जिंदगी गुजारने वाले को करबला में अकेला कर जिसके भाई को खत्म कर दिया गया, जिसके खानदान को खत्म कर दिया गया, अल्लाह, लेकिन मकसद पे निगाह रखने वाली जिसने कमर कस लिया था उसने बता दिया हम मुसीबत में घबराने वाले नहीं है, दीन हमसे जाने वाला नहीं है। जब जब इब्न ज़ियाद ने पूछा देखा तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या हुआ, शहजादी ने कहा देखा कह रहे हो तुम।

0: अच्छी सी बुढ़िया, ए प्यारी सी बुढ़िया, दाढ़ी, ये दाढ़ी मेरी दुश्मनी जहाँ है, कमबख्त ये अबरू किसी सौगन की तरह है, ये मूछे उड़ा दो, सिंगार करो मुझको, कुछ सुरमा लगा दो, छेद से मेरे होंठ बनाकर इस बेटू के चेहरे को बना अच्छा सा एक मुंह, मुझे दुल्हन बनना है बुढ़िया, दुल्हन।
1: वाह वाह वाह वाह, खुदा ना करे बेटा। जनाब इब्ने मुती, आप तो कूफे के साहिब इख्तदार अमीर है, बड़ी कबाहत आमेज बात है बेटा। कम से कम खलीफा की इज्जत का ख्याल कर लीजिए, अगर इन्हें पता चलेगा कि उनका अमीर कूफे में दुल्हन बन गया है, शर्म से पानी पानी हो जाएगा, जमीन में समा जाएगा शर्म से।
0: मुख्तार मेरा सर कलम करके फेंक दे, वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी तरह सवार दो तो खलीफा पसंद करेगा।
1: ठीक है बेटा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए।
2: वाह भाई बुढ़िया वाह, खैर हो तेरा इंशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह।
3: अरे ओ बुढ़िया सीधी खड़ी रहो,

0: सीधी खड़ी रहो।
1: चिल्ला क्यों रहे हो बुड्ढे, जानते हो मैं कितना डर गई हूँ।
0: अरे अब बुढ़िया करीब आओ।
1: मुझ पर ऐसी नजर उठा रहे हो, मैं कोई बेवा तो नहीं हूँ। मेरा शौहर अभी जिंदा है, इससे ज्यादा करीब आऊंगी तो गुनाह होगा।
2: मिनका मित्र, इन लोगों से कहो अपने तमाशों में गंदगी से परहेज करें।
3: जी अमीर।
2: और हाँ, जल्द अज जल्द शुरतों सिपाहियों को मुनज़्ज़म तौर पर आमादा कीजिए। कूफा में अब हर फैसला कानून के हाथों होगा। आज के बाद कोई कबीला अपनी मनमानी से कोई कदम नहीं उठाएगा। अब तमाम मुजरिमों को कानून उनके हर गुनाह की सजा देगा, लोग नहीं। हत्ता के खालिफों से बदतमीजी, गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा मना।
4: किस सोच में पड़े हो सरदार?
5: मेरी गाय ने 7 बच्चे दिए हैं क्या?
4: बहुत अच्छे, तुम तो पूरे रेवड़ के मालिक बन गए।
5: जी नहीं, अमीर मुझसे कूफे में नज़्मो ज़ब्त मांगते हैं।
4: तो तुम तो कूफे के नाज़िम बन गए, नया ओहदा मुबारक हो। अगर शुरते सिपाही चाहिए हो तो हमें मत भूलना।
5: एक कमर तोड़ जिम्मेदारी है क्या, मजाक नहीं है।
4: मतलब तुम बिन हुरैस या बिन मुजारब से कमतर हो बिन कामिल?
5: हालात बदल गए हैं क्या, सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। कोई सिपाही नहीं जिसकी मदद से शहर को संभाल सकूं। सबके सब भाग गए हैं।
4: भाग गए? कहां गए होंगे? भाई इन्हीं लोगों के दरमियान होंगे ना, इनके कुछ बड़ों को बुलाकर उनका एतमाद जीतना ही काफी होगा। सब अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। जायदा इब्ने कुदामा से मशवरा करो, वो सबको अच्छी तरह जानता है।
6: हमारे तमाम मुखालिफीन को अमान है, बशर्ते कि हमारे खिलाफ तलवार न उठाएं। हर किसी के अकीदे उनके लिए मोहतरम हैं। अगर कोई किसी जुर्म का इर्तकाब करता है तो उससे निमटने के लिए कानून और शरीयत मुकद्दस है। जो लोग हमसे बैत करने को मोहतरम समझते हैं वो हमारे दोस्त हैं, और हम उनके हुकूक का दिफा करने के जिम्मेदार हैं।
7: माफी चाहता हूँ अमीर, आपके बहुत से तरफदार कूफे के इज्जतदार और शरीफ अरबों को जान और माल लूटने की धमकी देते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि सब इंतकाम लेने के फिक्र में हैं। बहुत से अजम हजरात जो पहले अरब के शरीफों के गुलाम और नौकर हुआ करते थे, वो अपने आकाओं से बदतमीजी करने और गुस्ताखी करने लगे हैं।
6: अगर ये दावा ठीक निकला तो इसके सरगना लोगों को शदीद तरीन सजा सुनाऊंगा। अगर किसी का कोई हक जाया हुआ है तो वो अदालत में शिकायत करे, वो बरहक हुआ तो कानून उसे उसके हुकूक दिलाएगा।
7: कौन सी अदालत अमीर? फिलहाल ना तो कोई अदालत मौजूद है, ना कोई काजी कुर्सी पर है और ना कोई कानून जारी है।
6: जरा सब्र से काम लीजिए, हमने अभी मामलात की बागडोर संभाली है, मौजजा तो नहीं कर सकते। अभी सुन लीजिए, ये हैं अहकामात। सुनाओ कातिब, अहकामात सुनाओ ताकि कानून नाफिज करने वाले अभी से काम शुरू कर दें।
8: मदरजा ज़ेल अफराद बहुक्म अमीर मुख्तार लश्कर के साहिब मनसब हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि जल्द अज जल्द अपने मातहत अफराद को मुतायजन कर लें और जुज़ई और मजमुई तौर पर अपने नायबीन को मुकर्रर कर लें और नज्म ज़ब्त और कानून को हुकूमत अमीर मुख्तार में राइज करें। इनके नाम और मनसब ये हैं: इब्राहिम इब्ने मालिक अस्तरे नखई, लश्कर के सिपह सालार अब्दुल्ला इब्ने कामिले शाकरी, कूफे।

0: अरे ओ पुजारी इंसान कहाँ?
1: बाबा बाबा जान, हमें महल में वापस लौट जाना चाहिए।
2: सुनो मत अयास, सर नीचे करो और चलते रहो, उन्हें मत देखो, जैसे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं।
0: भाइयों, मैं इस जालिम को जानता हूँ, खुदा की कसम वो सितमगढ़ों के बड़ों में से है, इसे जाने मत देना, इसे मारना सवाब का काम है।
3: आदमखोरों, जाहिलों, ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोग किस तरह के मुसलमान हो कि एक इंसान को बेगुनाह मार डाला? तुम लोगों में और उनमें फर्क क्या रहा जो पहले तुम्हारे साथ यही हरकत किया करते?
0: अरे हो अबू उमरा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। क्या तुम लोग भूल गए हमने किस लिए कायम किया है? ये मनून उस चुंग की मान्यता जो हमारा खून चूसता था।
3: तुम कानून बनाने वाले हो जो हुक्म दे रहे हो?
0: कानून मैं हूँ, मैं कानून ये है जो अपने अकीले के जुर्म में सालों तक सजा काटता रहा है। कानून ये है, कानून ये है, कानून ये ताग है, ये ताग है कानून। खुदा की कसम, खुदा की कसम, उस्ताद जरा भी टेढ़ा होना चाहे

0: दोजख में जाने का शौकी नहीं। अगर यही होना है कि हुकूमत मुख्तार में खून नाहक इस तरह बहे तो इस हुकूमत का कासा ही पलट दूंगा। बखुदा कसम, अगर मौला अली की हुकूमत में कोई ऐसा वाकया पेश आता तो मनमानी करने वालों की खाल उधेड़ देते। क्या मंजर और उसके बेटे के कातिल मुजरिम हैं, सबको कैद कर लो।
1: जी अमीर।
2: हमारे दरमियान कुछ और तय हुआ था।
0: क्या तय पाया था रुफा?
2: तुमने कयाम के मकासद को सियासी मसलतों के नजर कर दिया अबू इसहाक। बज़ाहिर हुकूमत की मिठास ने आपको बहुत मजा दे दिया। जिस ग्रोह को कैद करने का हुक्म तुमने दिया है वो सब के सब ऐसे लोग हैं कि अली की मोहब्बत के जुर्म में उनके बदन में एक जगह भी सलामत नहीं रही। उन लोगों ने उस कुत्ते और कुत्ते के बच्चे को मारा है जिनका अगरचे करबला में कोई दखल नहीं था मगर उन्होंने मौला अली के मुरीदों पर कोई कम जुल्म भी नहीं ढाए हैं। क्या बात है अबू इसहाक, अदल और इंसाफ का प्रचार करने के सिलसिले में इतना परेशान है?
0: अगर हर किसी को अपनी राय के मुताबिक तलवार चलानी है और अपने ही फतवे पर अमल करना है तो इस तरह की हुकूमत के कोई मान ही नहीं है। ये कैसा फलसफा है तुम लोगों का?
2: ये तुम लोग हो जो अपने फलसफे के साथ हुसैन के दागदारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। आप लोगों ने कातलाने हुसैन के किसास के वादे पर कायम किया, इन लोगों से इंतकाम लेने का वादा किया, तो फिर क्या हुआ? कातलाने हुसैन हमारी नजरों के सामने शराब पी रहे हैं और हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर होगी, हम सियासत के साथ काम करना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है जो इन लोगों के मुकद्दस गुस्से की आग पर पानी डालकर उसे बुझा देना चाहती है? क्या आप डरते हैं कि आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाए? अगर आपने हुकूमत पाने के लिए कयाम किया है जिसकी वजह से लकड़ी के सहारे चलना चाहते हैं तो हमारा कोई ऐसा अवसर नहीं है।
0: बिन शद्दाद, मैं नहीं चाहता कि शियों के कयाम को बचकाना फैसलों और इस तरह की जल्दबाजियों से जाया कर दूं। शियों ने आप जैसों के गैर संजीदा फतवों की वजह से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं, कभी अपने दौर की जरूरतों को समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मैं ये कहूं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खून तुम जैसों के सर पर है तो गलत ना होगा। कभी भी अदालत के रास्ते पर नहीं चले तुम लोग, ना ऐनुल वर्दा में, ना करबला में और ना ही आज। हमेशा या तो अफराद किया है या तफरीत। अगर अपने आप को अली का शिया जानते हैं और अगर चाहते हैं कि अली के असहाब की हुकूमत बाद 30 साल शिकस्त और तकलीफों के बाद कोई नतीजा दे, जाइए और अपने आप और अपने खुदा के साथ तन्हाई में बैठिए और जिस काम के बारे में पता नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो और अपने ये 2 टके के फतवे मत दो।

0: तो ठीक है, मैं आप लोगों के गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। अगर मुख्तार आयाम से पहले इन अकायद का इजहार कर देता तो मैं उसकी बैत का गुनाह अपने सर न लेता। खुदाया माफ करना, मुझे माफ फरमा। अब जबकि मैं उसकी दिली ख्वाहिश जान चुका हूं, अब भी उसकी बैत ना तोड़ूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा।
1: रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथ ही न थे, कहां चले?
0: मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं।

0: रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथी न थे, कहाँ चले?
1: मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं, ऐनुल वर्दा के बयाबान में। मैं सुलेमान की कब्र की मिट्टी पर तयम्मुम करने जा रहा हूँ, ताकि जो हाथ मुख्तार की बैत में नजस किया है उसे पाक कर सकूं।
0: इस्तिग़फ़ार करो रुफाहा, तुम्हारा और मुख्तार का मिजाज नहीं मिलता, एक दूसरे को नापाकी का इल्जाम क्यों देते हो?
1: तुम उसके हामी हो क्योंकि उसने कयाम के माल गनीमत में से तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिया है। अपने आप पर रहम नहीं खाते तो अपने मरहूम बाप मालिक की इज्जत पर रहम खाओ। हमने अमीर और वजीर और सिपाही सालार बनने के लिए कयाम नहीं किया था। जब तक कातिलान हुसैन का किसास न हो जाए, ये कयाम मेरी नजर में कामयाब नहीं हुआ है। लगाम छोड़ दो।
2: मत करो शबस, बेटे मुख्तार, बेटे मुख्तार। मुख्तार ने अब तक 100 मरतबा कुर्बानी से वो हाथ पाक किया होगा जिससे तुम्हारी बैत ली है। भेड़िए के खतरे से डरने के बजाय पुरसुकून हो गया है। अगर मुख्तार ने तुमसे ली हुई बैत न तोड़ी और तुम्हें सूली पर न चढ़ाया तो मैं अपनी इन मूंछों को जला दूंगा।
3: तुम इस चूहे की दुम को मूंछें कह रहे हो? ये जुए और अय्याशी के बचे हुए सरमाए की शर्त क्यों लगा रहे हो? वो ऐसी शर्त लगाओ जो समझ में तो आए।
2: तुम्हारे वालिद के नाम को अपनी वालदा के नाम से जोड़ दो तो ठीक रहेगा।
4: शबस हल्के हो जाओ, सनान अपनी तमाम तर सादगी के साथ भी समझ चुका है कि तुमने मुख्तार की बैत करके अच्छा नहीं किया।
2: उसकी बैत चूल्हे भाड़ में जाए शेमन, बेचारा मजबूर था तो कुछ नजासत खालीस, मगर ये जो इसने मुख्तार की अमान पर यकीन कर लिया, इस पर मेरा खून खोल रहा है।
3: शेमर, क्या तुम लोगों पर ये नौबत आ गई है कि इस नाक़िसुल अक़्ल की बातों को अपनी हुज्जत समझते हो? गुफे के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं कि मैं उमर साद के लश्कर में था और हुसैन से जंग की है मैंने। अगर मुख्तार इंतकाम के चक्कर में होता तो कभी मुझ जैसों से बैत लेकर खुद को बदनाम न करता। क्या तुम लोग बहरे थे जो रुफाहा की इन्हीं बातों पर मुख्तार से होने वाली अलहदगी की खबर नहीं सुनी?
2: क्या तुमसे बैत लेना सिर्फ चाल है जंगली ऊंट?
4: शबाश, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मुख्तार हम जैसों की बैत को मोहतरम जानेगा?
3: फिलहाल तो मोहतरम जाना है, उमर साद को लिखा हुआ अमाननामा दिया है।
2: ये सब सियासत के पैतरे हैं, क्या भूल गए कि बिन यजीद ने इस झूठे को कसम दी थी कि आले जुबैर के खिलाफ साजिश ना करें? कुरान पर हाथ रख के कसम खाई, मगर जैसे ही आजाद हुआ उसने कसम तोड़ दी। ये खसलत मुख्तार है, जहां वो अपने दुश्मन को धोखा देने पर मजबूर होता है तो सर पर बिठा लेता है, मगर जहां उसकी मजबूरी खत्म वादे वही तोड़ देता है।
3: मसलन उसे कैसी मजबूरी लाहक थी जो उसने हमारी बैत कबूल कर ली?
5: तुमने हमें पागल समझा है शबस।
2: मुझे कहता है नाक़िसुल अक़्ल, अगर वाकई तुम ये नहीं जानते कि मुख्तार ने तुम्हारी बैत क्यों कबूल की है तो बहुत बड़े बेवकूफ।
6: आपकी किस्मत अच्छी थी जनाब शायर, अमीन ने आपका आना कबूल कर लिया। आ जाइए।

0: कहां चले बिन हमाम?
1: वाह वाह वाह, अबू उमरा के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो, इतना अली अली किया के बिलाखिर अपनी दाल रोटी का ठिकाना बनवा ही लिया। मैंने सुन रखा था कि अबू तुराब की

दुश्मन पर इस तरह तलवार चला रहा था कि गोया सरों के बाल उड़ा रहा था। रात अबू तुराब के साथियों की रात थी और अली उस रात दोबारा मसनदी अदालत पर बैठ गए।

0: मुझे कूफे से निकलने के लिए मुख्तार की मदद की जरूरत है।
1: आप इरादा कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हूं।
0: मैं कल रात को तैयार हूं।
1: रातों को निकलना मशकूक होगा। अब उमरा के जासूस रातों को दिनों से ज्यादा होशियार होते हैं। हम लोग सुबह क्यों ना निकले?
0: जैसा आपको ठीक लगे।

चुप रहना बेहतर है। किसी हकीम की बात हमारे सामने आई है, इंग्लिश में भी वही है, फ्रेंच में भी वही है, मैं समझता हूं हर जबान में वो होगा, लेकिन हमारे पास बात आई है नबीउल्लाह लुकमान, किसी किसी ने उनको नबी कहा है, लेकिन चले नबी ना माने तो हकीम तो थे। कुरान मजीद में इसी लुकमान के नाम का एक सूरा है, 31वां सूरा। जनाब लुकमान से हमें मिलता है कि जनाब लुकमान ने अपने फर्जंद को कहा, कहा या बुनैया इन कान अल कलामो मिन फद्दतिन फइन सुकूता मिन धब। बेटा है मेरे लाल, अगर बोलना चांदी के बराबर है, इन कान अल कलामो मिन फद्दा, अगर बोलना चांदी के बराबर है तो याद रखना कि न बोलना, खामोश रहना, सुकूत इख्तियार करना क्या है? सोना है। अब सोना बेहतर या चांदी? आप सब कहते हैं ना कि सोना बेहतर, लेकिन हमारा सवाल उसी जगह पर है कि बोलना बेहतर या खामोश रहना। तो दीन का जवाब है बोलना बेहतर है, दीन का जवाब है बोलना बेहतर है। अगर ये कुव्वत बयान न होती तो खुदा की तारीफ किससे हम करते, दुआएं किससे हम करते, लोगों की मदद हम किससे करते, अम्र बिल मारूफ किससे करते, लोगों को समझाते किससे करते। मालूम हुआ कि बोलना बेहतर है खामोश रहने से, बशर्त ये कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौला ने बयान किया लिल्लिसान आफात, ये जबान जो है ना उसके लिए बहुत आफतें हैं। तो बोलना बेहतर है बशर्त ये कि जबान की जो बीमारियां है, जबान की जो खराबियां है, वो अगर न हो तो बोलना बेहतर है। मैं आपसे पूछता हूं किसको बोलना अच्छा नहीं लगता? ये इंसान की फितरत में है, इसीलिए तो खुदावंद करीम ने कहा अल्लमुल बयान, हमने इंसान को पैदा करने के बाद, उसकी खलकत करने के बाद हमने उसको कुव्वते बयान अता की, अल्लमुल बयान, उसके अंदर बोलने की सलाहियत डाल दी। अब बोलने की जब बात आती है तो सबको बोलना होता है। अब देखिएगा कई दो चार जमा हुए, पांच दस जमा हो गए, बीच में एक तो होगा, अब मैं आज सोच रहा था कि उर्दू में उसको क्या कहते होंगे, अमीर भाई गुजराती में आप बोलिए डोडायू था, वो उर्दू में क्या कहते होंगे उसको, कोई मदद कर ले, डोडायू था वो, देवशाला, कई भी बात होती होगी, सबको यह होगा कि मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी अपना हिस्सा ले लूं। क्यों? क्योंकि बोलने से आदमी का, उसकी समझ जो है वो सामने नबूदार होती है। यानी आदमी की फितरत, इंसान की फितरत में है कि जहां न बोलने का हो वहां भी बोलने की कोशिश कर लेता है। क्यों? खुदा ने उसको इज्जत बख्शी है, खुदा ने उसको कुव्वत बयान अता की है, इसलिए उसको शौक पैदा होता है, जब लोग बातें कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलूं, आपने बोल लिया मैं भी कुछ बोलूं, मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो इंसान की फितरत है। और यहां ये बात आ गई तो एक बात कर दूं, देखिए ये मजलिस से किसी की ताने के लिए नहीं होती, मैंने पहले बयान कर दी ना, आज यूं समझ लीजिए कि हमारे अशरे का मौजू है बेदारी, वेकअप। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब कह दिया कि जबान की आफतें होती है, जबान के लिए बहुत चीजें खतरनाक होती है, यही जबान से क्या क्या होता है आप गिनवाइए, मैं शुरू करता हूं। यही जबान से तोहमतें होती है, और क्या होता है नौजवान, गीबतें, और क्या होता है झूठ, इसी जबान से होता है, और किसी का मजाक उड़ाना इसी जबान से, बोहतान इसी जबान से, नमीमा झगड़े करवाना इसी जबान से, झूठी कसम खाना इसी जबान से, गीबतें झूठ खुसूमत

नमीमा, जिसको गुजराती में सुखनचीनी कहते हैं। ये सब क्या है? जबान की खराबियां है, राजों को फाश करना। ये सब किससे होता है? इसी जबान से होता है। अब खुदा ने इतनी तारीफ इस जबान की और मौला ने कहा कि जबान की आफात है, लेकिन दुनिया के अंदर मैं कहता हूं, देखिए आज की मजलिस, आज चहलुम की रात है और जुमेरात भी है। मैं सोच रहा था कि आज क्या पढ़ूं, मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जुमेरात की रात है तो बजबा हैसियत से ज्यादा होगा, क्योंकि जुमेरात की रात है, ऊपर से चहलुम की भी रात है, तो कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसके अंदर वेकअप बेदारी की बात आ जाए। बेशक

को सबको कुव्वते बयान अता की है, लेकिन एक बात है, आज की एक मजलिस मैं पढ़ के और आप सुन के मुश्तहिद नहीं हो जाओगे, ना एक ही मजलिस में पूरा माशरा बदल जाएगा। नबी करीम को कितने साल लगे, फिर भी जितनी थी गुंजाइश उतनी नहीं सामने आई। तो मेरी एक मजलिस आज की पढ़ने से न पूरा माशरा बदल जाएगा, लेकिन अगर एक आदमी बदल जाए तो आज की मजलिस कामयाब। अब देखिए, एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूं, किसी को बुरा लगाने की जरूरत नहीं। पूरी जो ये दुनिया है ना, मौलाए कायनात ने जो इलाज बताया है, अगर उस पर मैं अमल करना शुरू कर दूं तो माशरे की भी तरक्की और बेहतरी होगी और पूरी दुनिया में अमन व अमान आ सकता है। सुनिएगा, मैं कई बार पढ़ता हूं, ये मजलिसें जो है ना उसमें एक कमजोरी होती है। मौलाना मजलिस में कमजोरी? हाँ होती है। पहले तो खुद पढ़ने वाला इतना कमजोर होता है, खाली डब्बा होता है मेरे जैसा, आपको पता है ना, खाली डब्बा जितना खाली हो उतना आवाज ज्यादा होता है। वो जो ऐसे ऐसे बुझा बजाते, क्या बोलते उसको, तबले, क्या बोलते भाई, बोलो, हाँ, ढोल, ढोल जितना बड़ा और जितना ज्यादा खाली होगा इतनी ज्यादा आवाज होगी। मैं भी उन्हीं में से हूं। मजलिस की एक कमजोरी है, वो क्या है, आप आज की मजलिस पूरी सुनिएगा, हर रोज की मजलिस यही है, जो भी मौलाना हो, ये मजलिस जब हम पढ़ते हैं ना तो इनको लगता है कि जो बाजू में बैठा है ना उनके लिए है, और बाजू में जो बैठा है उसको लगता है कि ये बाजू में जो इनके लिए है। किसी को ये लगता ही नहीं कि ये मेरी बात हो रही है, किसी को ये लगता ही नहीं कि ये बात मुझे मेरे लिए मुनासिब है। नहीं, मैं तो गुजराती में कहते दूध नो धोए लो छो हूं, दूध का धुला हुआ हूं मैं। ये मजलिस से तो मैं आता हूं सवाब के लिए, मेरे लिए नहीं होती मजलिस से। जो बाजू में बैठा है वो, जो उस दीवार पे बैठा है वो, जो बाहर बैठा है वो। अब देखिए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, सच या अली, नहजुल बलागा का कौल है, मौलाए कायनात ने कहा, मैं पहले आपसे वादा ले लूं, मजलिस में बैठे हो, वादा करो कि इस पे अमल करोगे, जोर से एक सलवात पढ़ो, फिर खुदा के साथ ये वादा है, मेरे साथ नहीं, सलवात पढ़ो, मौला ने कहा लौ सकतल जाहिल लमख्तलफन नास, लौ सकतल जाहिल लमख्तलफन नास, अगर जाहिल इंसान खामोश रहना सीख जाए तो लोगों में इख्तिलाफ कभी नहीं आएगा। लौ सकतल जाहिल, तू नहीं भाई मैं, लौ सकतल जाहिल लमख्तलफन नास, अगर जाहिल इंसान चुप रहना सीख जाए या चुप रह जाए, खामोश हो जाए, तो दुनिया के अंदर कहीं भी इख्तिलाफ नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्या करे, यही बात जो शुरू में की, जाहिल को भी बोलना है, खुदा ने जो उसको कुव्वत बयान दी है, बोलने की सलाहियत दी है, इसलिए उसको भी शौक होता है कि मैं भी कुछ बोलूं। हालांकि इसी जबान से इतनी गड़बड़ होती है, इतनी लोगों को तकलीफ होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे और आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अलैहि सलाम, बिस्तरे मर्ग पे है। कुछ रोज पहले हमने उनकी शहादत मनाई ना, 25 मुहर्रम को, ये हमारे चौथे इमाम बिस्तरे मर्ग पर। अब थोड़ी देर में इमाम अलैहि सलाम की रूह खुदा की तरफ परवाज करने वाली है। बाजू में हमारे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम, बैठे हैं,
اور چوتھے امام

कितने ऐसे इंसान हैं जिसको उसकी जबान ने हलाक कर दिया। इतना ही, ये करबला ऐसे ही बनी है, ये भी मौला का कॉल है। कम मिन दमिन सफकहू फम, दुनिया के अंदर कितने ऐसे खून है लाहक खून कि जिसको बहाने वाला मुंह होता है। ये मुंह से जो बातें निकलती है उसके पीछे कितने ऐसे खून है जिसकी असली, जिसका असली सबब, जिसकी असली वजह अगर कोई है तो वो क्या है? ये जबान से निकले हुए अल्फाज और बात। जबान से निकले का मतलब, आज का जमाना आप कहोगे मौलाना हम ज्यादा बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं, तो कहां लिखते हो? फोन पे ना, व्हाट्सएप पे, वहां से वहां गाली, वहां से वहां गाली, वहां से वहां गीबत, वहां से वहां बातें। शायद इस जबान से नहीं बोलते, लेकिन ये आज की नई जबान से कुव्वत बयान, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ए खुदा के बंदे, संभल के रहना, वेक अप, उठ जा, बेदार हो जा, ये जबान की बहुत सी जिम्मेदारी है। और ये दिन सदके में मानता है, सदके में। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने कहा, इम्सिक लिसानक फइन्नहा सदकतुन तुसद्दिकु बिहा अला नफसिक। तर्जुमा करोगे यार? इम्सिक लिसानक, नहीं पाएगा। अपनी जबान को संभाल, नबी करीम, इम्सिक लिसानक, इम्सिक लिसानक फइन्नहा सदकतुन तुसद्दिकु बिहा अला नफसिक। क्योंकि अपनी जबान को संभालना एक ऐसा सदका है जो तू अपने आप को दे रहा है। खैर ख्वाह चाहता है तेरी खुद की आखिरत और दुनिया, बेहतरीन बनाना चाहता है, अपनी जबान को संभाल। कितनी हदीसें हैं ईमान मुसलमान की हमारे सामने जहां पर खामोशी की प्रेज की गई है, तारीफ की गई है। क्यों? क्योंकि इस जबान से बहुत सी ऐसी चीज होती है, इतने आफात है इस जबान के, जब मैं इसको संभालता नहीं। जाग जा, वेक अप, गफलत की नींद में से मुसलमान उठ जा। शायद तुझे पता नहीं कि खुदा ने तुझे ये कुव्वत बयान जो दी है, ये बोलने की ताकत और सलाहियत जो दी है, ये एक जिम्मेदारी भी है। खुदा की नेमत तो है, लेकिन इस जबान को इस्तेमाल करते वक्त, इस जबान को चलाते वक्त ख्याल कर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कहां बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये जबान खुदा की वो नेमत है, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा था, इतनी कुरान मजीद की आयतें हैं, क्या करूं। ये हो गए 55 मिनट, आज कुछ है रियायत 5-10 मिनट की ज्यादा? नहीं है अमीर भाई ने कहा, नहीं है। सल्लु अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जबान इसको संभाल के रख। कितने मुफ्तियों ने फतवे दिए थे ना इमामों को शहीद करने के लिए, उसमें हमारे तीसरे इमाम, क्या नहीं झेला इमामों ने, क्या नहीं सुना इमामों ने। आज चहलुम की रात, आदतन हस्बे मामूल रिहाई की बात होती है ना, आप देखिए यहां पर भी इमाम को बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोलना बेहतर है, लेकिन मौका समझकर। तारिक ने बयान किया, कि यजीद के दरबार में हमारे चौथे इमाम को बुलाया गया। चश्मे तसव्वुर सोचते हैं साथ में मिलकर, हमारे चौथे इमाम दरबार में जा रहे हैं, हाल क्या है? हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, चश्मे तसव्वुर सोचिएगा, गले में खारदार तौक,

किसी किताब में हो या ना हो, किसी आलिम ने पढ़ा हो या ना हो, चश्मे तसव्वुर से मैं समझता हूँ कि जब ये काफिला निकलता होगा तो निकलते वक्त एक बीबी ज़रूर गम हुई होगी। कौन? यही रबाब। जब लोगों ने पूछा होगा अरे रबाब कहाँ पर है, तो जवाब शायद आया होगा अरे माँ अपनी नन्ही बेटी की औलाद को कैसे छोड़े। हाजादारो ये काफिला रिहा हो गया, लेकिन एक वक्त ये भी आया ना, कल हमने पढ़ा था कि जब ये काफिला वापस करबला आया होगा तो क्या माजरा हुआ होगा। वहां पर अरबाब मिंबर से आपने सुना है ना कि वहां हुसैन का पहला जायर आया है जिसका नाम क्या है, हदीस किस्सा का रावी क्या है उसका नाम, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। हुसैन की ज्यारत के लिए आए हैं। मैं क्या बयान करूं, अब वक्त में गुंजाइश नहीं। अरे सैयद सज्जाद को आज तक कोई पुरसा देने वाला नहीं मिला, ये पहली बार है करबला के बाद कि कोई आके जाबिर, कोई आके सैयद सज्जाद को पुरसा दे। यही मौलाना सादिक हसन बयान किया करते हैं कि जब जाबिर की मुलाकात सैयद सज्जाद से हुई और जाबिद ने सैयद सज्जाद को गले लगाया, उसके बाद सैयद सज्जाद ने कहा चचा जाबिर मैं आपको बताता हूँ कि ये करबला में क्या हुआ था। चचा जाबिर अरे ये वो जगह है जहाँ मेरे अकबर के सीने में बाढ़। अरे चचा जाबिर अरे ये वो जगह है जहाँ मेरे नन्हे अली असगर को तीर से मार। अरे चचा जाबिर अरे ये वो जगह है जहाँ हमारे खैमों को आग लगाई थी। चचा जाबिर नहरे फुरात की तरफ चले होंगे। चचा ये वो जगह है जहाँ मेरा गयूर चचा खुश है। ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.

सलाम किया जा रहा है, खड़े होकर सलाम किया जा रहा है। इमाम हुसैन डिजर्व करते हैं, उनकी अजमत यह है कि उन्हें खड़े होकर सलाम किया जाए, वल्ला वाजिब नहीं है। बैठ के भी सलाम कर सकते हैं, कोई भी आता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मौला हुसैन की अजमत ये है भाई, देखिए पूरा कुरान जो है ना उसमें जगह जगह मुत्तकी की तारीफ की गई है। वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तकीन, जन्नत को मुत्तकियों के लिए सजाया गया। कुरान क्या है? हुदल लिल्मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हर चीज पूरे कुरान में उठा के लिए मुत्तकी मुत्तकी। मौला कौन है? मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन है। तो अब हर जगह तारीफ मुत्तकी की है, मुत्तकी हर चीज है कुरान में। तो अब क्या है तकवा? तकवा जो रखता है वो मुत्तकी होता है। तो सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है, उन्हें रिवर करता है, उनकी रेफरेंस को मानता है, वही मुत्तकी होता है। तो तकवा यह है कि इंसान अल्लाह की उन निशानियों की ताजीम करे, अजमत का कायल होना। ऐसा नहीं कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है बल्कि दीन का हिस्सा है। बहुत से लोग समझते हैं ये एशियन कल्चर है, अफ्रीकी कल्चर है कि हम किसी की तहजीम करते हैं, नहीं, ये दीन का जुज है। जनाबे सैयदा का रसूल खुदा के लिए खड़े होना और खुद रसूल खुदा का जनाबे सैयदा के लिए खड़े होना। अज़ाने के रामी ये जनाब सरवर कायनात बेटी के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि सहाबा को इबादत सिखा रहे हैं। अज़ाने के रामी मौलाए कायनात जनाब सैयदा के लिए खड़े हो रहे हैं, बीवी के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तवज्जो, माँ बाप के लिए खड़े होने की ताकीद है, बीवी के लिए खड़े होने की ताकीद नहीं है। जबकि आजकल कल्चर हो चुका माशाल्लाह, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ताकीद ये नहीं है कि बीवी के लिए खड़े हो। मौलाए कायनात से पूछा या अली आप क्या बीवियों के लिए खड़े होना वाजिब है? फरमाया नहीं। कब फिर आप सैयदा के लिए क्यों खड़े होते हैं? कब मैं सैयदा के लिए इसलिए खड़ा होता हूं कि मैंने अपनी आंखों से पैगंबर को सैयदा के लिए खड़े होते देखा है। अगर सुन्नत नबवी को मैं अली जिंदा नहीं रखूंगा तो और कौन जिंदा रखेगा? यानी कि दीन जो है ना वो ताजीम का नाम है, अजमत का नाम है। तो अब ज़ियारात जो है वो पीक ऑफ अजमत, यानी किसी भी उरूज अगर आपने मेराज देखनी हो तो सलाम है। और सलाम भी आप देखते हैं ना कि हमारे बहुत से कल्चर के अंदर हाथ भी झुकाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि रामी ये वाजिब नहीं है, ये कुछ इशारा करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर खड़े होकर सर झुका लिया जाए और हाथ सीने पर रख लिया जाए, कोई भी ऐसा काम जिससे पता चले कि जिसे सलाम किया जा रहा है वो बहुत बाअज़मत है, देखने वाला देख के बताइए जिसे सलाम कर रहे हैं वो आम आदमी नहीं है। लोग बादशाहों के सामने जाके झुक जाते हैं, आपसे हुसैन के लिए नहीं झुका जा रहा। अज़ाने के रामी इसीलिए शायद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेरी ने कहा था शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। तो अज़ाने के रामी मौला हुसैन ये बादशाह हुक्मरान हैं, ये हुकूमतों के बादशाह हैं, हुसैन दिलों के बादशाह। तो अज़ाने के रामी दिलों के बादशाह को हमेशा खड़े होकर, अब ये तफसील में नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा एक एक दो दो आदाब पेश करता रहूँगा अशरे के दौरान, लेकिन आज जो अल्फाज हैं मौला के उन्हें पेश करें। अस्सलाम अला हबीबिल्लाह वलीयल्लाह व हबीबे, पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें एक मरतबा मैं कोई किसी को लकब देने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे लिए लकब दे देते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये शम्सुल उलमा हैं, ये खतीब विलायत, अभी तो इतने अलकाब हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहे हैं, कि जो लोग जो हैं वो लोगों के लिए खुतबा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अज़ाने गिरामी ये हमेशा क्या होता है, इस पर गौर कीजिएगा, माजरत के साथ इस पर गौर कर लीजिएगा, लकब देने वाला कौन है? आया वो खुश करने के लिए लकब दे रहा है या बहुत ज्यादा अकीदत रखता है इसलिए लकब दे रहा है? है तो ना कि आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मिसाल के तौर पे माँ को औलाद से मोहब्बत होती, तवज्जो, तो माँ क्या कहती है, यही मेरा सूरज है, यही मेरा चांद है, यही मेरे सितारे, सब कुछ यही है। अब ये वाकई सूरज चांद सितारे नहीं बोल रहा है, माँ की मोहब्बत बोल रही है, मैं अभी भी नहीं पहुंचा पाया। अज़ाने गिरामी आपकी किसी से अकीदत है आप उसे सारे अलकाब दे देंगे, क्यों? आपकी अकीदत बोल रही है, जज्बात बोल रहे हैं, इमोशंस बोल रहे हैं, अभी भी मैं पहुंचा नहीं पा रहा। लेकिन अल्लाह सूरह नजम में रसूल खुदा के लिए फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये हवाए नफ्स से कलाम ही नहीं करते, ये जो बोलते हैं वही ये इलाही होता है। तो जाने की रामी जब मासूमीन कहें हुसैन ऐसे हैं तो वैसे ही हैं, क्यों? क्योंकि ये हवाए नफ्स से नहीं बोलते, इनके जज्बात नहीं बोलते, इनके इमोशंस नहीं बोलते, बल्कि जो ये बोलते हैं वो वही इलाही होती।

मैं तीर मारा था। आजाने ग्रामी दूसरा मकाम कहा कि पैगंबर सलाम गले को बहुत चूमते थे। कहा गले को इतना क्यों चूमते थे? कहा यहां खंजर ने चलना है। तीसरा मकाम का लबों को बहुत चूमते थे। जब दो तीन महीने के मौला हुसैन बार बार लबों को चूमते और रोते, कहा या रसूलल्लाह लबों को इतना क्यों चूमते हैं? कहा एक मलऊन की छड़ी इन लबों पे चलेगी। आप जानते हैं ना, रिवायात में है कि दो लोगों ने छड़ी लबों पे मारी थी। पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? एक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने छड़ी मारी थी और दूसरा यजीद ने लबों पे छड़ी रखी। खैजरान की लकड़ी थी, लबों पे रखी। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, ओ मलऊन छड़ी हटा, मैंने पैगंबर को आंखों से इन लबों के बोसे देते देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हैं चौथा मकाम सीने को बहुत चूमते थे। शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं सीने को क्यों चूमते थे? कहा यहां घोड़ों की टापों ने आना था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने बहुत खुल के पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। बस भी मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं जनाबे उम्मे सलमा की। तिर्मिजी शरीफ में है, जामे तिर्मिजी में, सहाय सित्ता में से भाइयों की किताब है जामे तिर्मिजी। तो वहाँ पे लिखा है कि आशूरे का दिन था, जनाबे उम्मे सलमा कहती हैं बहुत गर्मी थी, दोपहर की गर्मी की वजह से मैं सो गई। जब कैलूला कह रही है, मैं जब सो रही थी ना, मैंने ख्वाब में देखा पैगंबर के सर पे अमामा नहीं है, खाक है। आपकी दाढ़ी में खाक है, आंसू बह रहे हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी इस हालत में नहीं देखा, आप इस हालत में क्यों आए हैं, क्या हुआ? तो पैगंबर ने रो के फरमाया, उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया, उम्मे सलमा मेरे हुसैन को करबला में ज़िबह कर दिया गया। अब तिर्मिजी शरीफ में लिखा है जनाबे उम्मे सलमा ख्वाब से उठी, अपने एक हुजरे के अंदर एक शीशी के अंदर खाके करबला रखी थी कि रसूल खुदा ने फरमाया था, उम्मे सलमा मुझे जिब्राइल ने करबला की मट्टी लाके दी है, जब ये सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। जनाबे उम्मे सलमा कहती है मैंने शीशी देखी, उसमें खून उबल रहा था, मैं समझ गई हुसैन मारे गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। अब उलमा की मौजूदगी में एक रिवायत पढ़ना चाहता हूं। खुदा की कसम माली सिप्तैन में और दीगर किताबों में लिखा है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा मौला हुसैन की शहादत की खबर मदीने आई, लेकिन कोई मानता नहीं था। कैसे मुमकिन है मुसलमान नबी के नवासे को मार दें? भाई अब मैं वो आखिरी अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे दो से चार मिनट चाहिए। मेरी दरख्वास्त है, मेरी मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू आएगा। भाई आज पहली मजलिस से मुझे माफ कीजिएगा, हर आंख में आंसू होगा। तीन रिवायात है मौला हुसैन की शहादत की, तीन, तीनों पढ़ने लगा हूं। ज़ुबह मिनल क़िफ़ा, एक रिवायत में पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया, शिमर ने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया। दूसरी रिवायत में नहर किया गया, एक मलऊन ने गले के गोदाल में नेजा मारा था, जैसे ऊंट को नहर किया जाता है, मौला हुसैन के गले में नेजा मारा, उससे शहादत हुई। पढ़ूं तीसरी रिवायत, बर्दाश्त करेंगे? तीसरी रिवायत ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना से रिवायत है। क्या रिवायत है? कि शिमर ने क्या किया, जाल सुन अला सदरे, सीने पे सवार था, आखिज़ुन बिलहियते, दाढ़ी को पकड़ रखा था और सामने से खंजर चलाया। अजरकुम अल्लाह। जब पूछा गया ना हमारे उलमा से, बताइए इन तीनों रिवायात में से कौन सी सही है, कौन सी सही है, पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया, सामने से ज़िबा किया या नहर किया गया है? सुनेंगे अल्फाज, मैं पढ़ दूं या नहीं पढ़ूं? बताइए कौन सी रिवायत सही है। तो

0: हमारे उलमा ने लिखा तीनों सही है।
1: पहले एक मलून ने नेजा मारा, फिर शिमर ने पुश्ते गर्दन से खंजर चलाया। जब मौला ने कहा शिमर मैं तेरे नबी का नवासा हूं, उसने सीधा किया।
0: आयतुल्ला जवादी आमली के अल्फाज हैं।

इनकलाब की कामयाबी से पहले ठीक सन 1964 से 1976 तक आका खामनाई 6 मरतबा जेल गए। इनमें से 4 मरतबा इमाम खुमैनी की जिला वतनी के बाद था।

चार मर्तबा मशहद की फौजी जेल सेल नंबर 77 में 1964, 1968, 1971 और 1972 में कैद रहे। इनफरादी सेल नंबर 77 दो मर्तबा तेहरान में कैद रहे।

1964 में कजल कला में रखा गया। फिर दूसरी मर्तबा 1975 में सावाग की मुश्तरका कमेटी की मशहूर जेल में कैद किया गया, जहां खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था।

0: इस सेल का तूल 160 सेंटीमीटर और अर्ज 140 सेंटीमीटर है।
1: कितना वक्त यहाँ रहे?
0: मैं 8 महीने यहाँ रहा हूँ। इसने दरवाजा खोला, मैंने इसे नहीं देखा। इसी तरह कॉलर खुला हुआ और गर्दन में कुछ पहन रखा था। उसने देखा और पूछा, खामनाई तुम हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा, जिस खामनाई की बात करते हैं वो तुम हो, मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहता है मैं मनोशहरी हूँ। मेरी तरफ देखा ताकि मेरे चेहरे पर अपनी बात के असरात को देख सके। मैं फौरी जान गया, पहचान गया कि कौन है। इसके बारे में बहुत से वाकयात सुन रखे थे, लेकिन मैंने जाहिर ना किया कि मैं उसे जान गया हूँ। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वही हो जो मछली की तरह तप्तीशी हाथ से निकल जाते हो, और तुम्हारे काम अलग अलग देखो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनको इकट्ठा करो तो खुदा ही जानता है कि कितने खतरनाक हैं।
2: तशद्दुद के मायने तो कुछ भी नहीं, शायद सख्ती से हाथ बांधने की बात हो।
1: लेकिन वो नफसियाती और जिस्मानी तशद्दुद की बात करते हैं।
2: जिस्मानी मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ। पहले कभी ऐसा हुआ हो शायद मुमकिन है।
1: मैंने आज ही बात की है एक आदमी से, मेरे यकीन है उसने मुझे जिस्मानी तशद्दुद के बारे में बताया है।

23 अक्टूबर 1977 को इमाम खुमैनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी की नागहानी मौत की खबर आई। मुस्तफ़ा की मौत से इमाम की ईरान वापसी तक 1 साल 3 महीने और 8 दिन गुजरे थे। मुबहम अंदाज में इमाम के बड़े बेटे की मौत के साथ ही कुम, तहरान, यज़्द, शिराज और तबरेज में बड़ी सतह के एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। इन मुजाहरों में सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। इस मौके पर आकाए खामनाई और दोस्तों की नजरियाती और तंजीमी कोशिशों के नताइज वाज़े तौर पर आवाम में सामने आए। उन्होंने शहरों में शहीद होने वालों के चहलम से फायदा उठाया। उन्होंने मस्जिद, बाजार और तालीमी इदारों में मौजूद अपने इनफरादी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी मुजाहरों ने नए सिलसिले शुरू कर दिए।

अलमनार टीवी चैनल की टीम तहरान मेहराबाद एयरपोर्ट से जाहिदान चली गई। वहां से 325 किलोमीटर फासले पर वाके ईरान शहर के लिए गाड़ी के साथ सफर शुरू किया।

0: 11 नवंबर 1977 को आकाए खामनाई ईरान शहर दाखिल हुए। यहाँ पुराने घरों और महलों में बिल्कुल ठीक इस घर में आकाए खामनाई अपने अहले खाना और साथियों से दूर 8 महीने जिला वतनी में अकेले एक अजनबी की हैसियत से यहाँ मुकीम रहे। आज इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ आकाए खामनाई और इनके जिला वतन साथियों की जिंदगी को दिखाया गया है।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं सज्जादी आपकी खिदमत में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आकाए खामनाई अपनी ईरान शहर जिला वतनी के दौरान मुकीम रहे थे। आइए अंदर आ जाइए।

2 जुलाई 1978 बरोज इतवार असर का वक्त दूसरे दिनों से मुख्तलिफ था। ईरान शहर में जबरदस्त सैलाब आ गया, अक्सर घर और बागात तबाह हो गए।

0: हरकत में बलूची लिबास पहना करते थे। आप लोगों के करीब थे, उनसे बातें सुनते थे और उनसे बातें करते थे। इस सब का बलूचों की जमीर पर गहरा असर पड़ा।
1: पहले दिन हम आकाए खामनाई के घर पहुंचे ताकि इनके हमरा लोगों के घरों में और दूसरी जगहों पर जाएं। हमारे साथ एक रहनुमा बनाम सुलेमान था ताकि हर कुंबे के अफराद की गिनती की जाए और फिर इन्हें मस्जिद आले रसूल से इमदादी सामान और गजाई अजनास हासिल करने के लिए एक रसीद दी जाए, और जो भी मदद आ रही थी मकामी उलमा के ज़रिए तमाम मुतासरीन में तकसीम हो रही थी। दूसरे दिन आकाए खामनाई ने कहा, मैं तुम्हारे हमरा नहीं आऊँगा, आप शेख राशिद यजदी या शेख रहीमी खुरमाबादी के साथ जाएं। हम उनके हमरा गए और लोगों से बलोची जबान में बात करने की जिम्मेदारी मैंने निभाई। फिर हम इन्हें रसीद देते ताकि मस्जिद से जाकर इमदादी सामान हासिल कर लें। आकाए खामनाई हमेशा बलोची अहले सुन्नत लोगों के साथ बैठते थे और इनके हमरा चाय पीते थे, उनके साथ शाह के खिलाफ बातें करते, उनके हालो अहवाल पूछते, और इस तरह एक आम आदमी से लेकर उलमा तक हर किसी से मजबूत और गहरा ताल्लुक बना लिया था। इसी वजह से वो उनका खास एहतराम रखते थे।
2: शहर अजीज ईरान शहर برای من نقطه درخشنده ای در خاطرات گذشته است।
3: मेरा प्यारा शहर ईरान शहर मेरी यादों में मेरे लिए माजी का रोशन बाब है। अगरचा हर कोई अपने घर, अपनी ज़िंदगी, अहलो अयाल और इलाके वालों से दूरी में तन्हाई का एहसास करता है, लेकिन मुझे 1977-78 में ईरानशहर के अंदर तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। तागूती हुकूमत की सियासत ये थी कि लोगों के दरमियान बदगुमानी पैदा करे। एक दूसरे के दिलों में मैल पैदा करते थे, लोगों के जहनों में एक दूसरे के लिए बुरी सोच और बुराई ईजाद करते थे। शिया को सुन्नी के मुकाबले में और सुन्नी को शिया के मुकाबले में लाते थे, बलोची को फारसी के मद्दे मुकाबिल। सारे मुल्क में ऐसा ही माहौल था। मेरे लिए एक आलिम दीन और गरीब तालिब इल्म के उन्मान से और इस शहर में अनजान होने की बिना पर बहुत मुश्किल था कि किसी से राबता कर सकूं। लेकिन जब ईरानशहर में सैलाब आया, मेरा इस शहर के हर तबके, हर एक फर्द के साथ गहरा रब्त बरकरार हो गया।
2: اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد ارتباط ما با آحاد مردم با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد

0: अजमान के लोगों से मिलते थे। आजकल इस घर की तामीर हो रही है।
1: سلام حجي سلام سلام سلام سلام سلام

15 जनवरी 1979 को आका खामनाई तेहरान चले गए। दूसरे दिन शाह ईरान से चला गया। 2 हफ्ते बाद रहबर कबीर जिला वतनी के बाद वतन वापस आए।

31 जनवरी 1979 को शाम 6 बजे रूहउल्लाह खुमैनी इनकलाबी सरबराही मरकज रफा स्कूल में पहुंचे। आकाए खामनाई चुप सादे और फरते अकीदत में डूबकर 14 साल जिलावतनी गुजारने वाले अपने उस्ताद और कायद को देख रहे थे। उनका दिल चाहा कि उनसे गले मिलें, लेकिन तकाजाए अदब की बिना पर शर्मो हया ने रोक लिया। रूहउल्लाह

खुमैनी यहां तीसरी या चौथी सीढ़ी पर बैठे थे, अपने तलबा की तरफ देखा, इन्हें सलाम किया और फिर इनका शुक्रिया अदा किया। आइंदा आने वाले दिनों में सब्र से काम लेने की ताकीद की, फिर इनके लिए दुआ की और इजाजत रुख्सत लेकर खरामा खरामा दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले गए।